हिप्पोक्रेट ने इसे इस्तेमाल किया। इब्न सीना ने अपनी किताब में इसके बारे में लिखा और बहुत से लोग आज भी इस तरीकाकार का सहारा लेते हैं। कफ थेरेपी 4000 साल पुराना शफायाबी का तरीकाकार है, लेकिन कोई इसे अनाड़ी करता है तो भी शफायाबी के बजाय आपको सेहत के संगीन मसाइल दरपेश हो सकते हैं। आइए मिलकर सीखते हैं कि किन चीजों पर ध्यान देना है और इसे कैसे करना है। हालिया वर्षों में लोग अपनी सेहत को सहारा देने के लिए मुख्तलिफ तरीकों की तरफ तेज से रुजू कर रहे हैं। इस जस्तजू के हिस्से के तौर पर रवायती तकमीली तिब्बी अमल दरामद हर गुजरते दिन मजीद तवज्जो हासिल कर रहे हैं। एकोपंक्चर और योंग थेरेपी से लेकर अरोमा थेरेपी और जोन थेरेपी तक वसी तरीकाकार का इहाता करने वाले रवायती तकमीली तिब्बी अमल न सिर्फ जिस्मानी सेहत बल्कि जहनी मजबूरी जिंदगी के तवाजन के लिए भी हल पेश कर सकता है। इन तरीकों में से एक कपिंग थेरेपी है। ये मश जो हाल ही में दोबारा मंजरेआम पर आई है आज बारीक बिनी से जांची जा रही है। आज हम हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के इमरानिया ट्रेनिंग एंड रिसर्च अस्पताल के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुलेमान एरसोई की तरफ से इस मौजू पर टीआरटी खबर को फराहम करता मालूमात आप तक पहुंचा रहे हैं। कपिंग थेरेपी, जिसे अवाम में हजामा के नाम से भी जाना जाता है, इसकी तारीख तकरीबन 4000 साल कदीम है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एरसोई इस तवील रवायत की वजाहत इस तरह करते हैं। इल्म तिब के बाप दादा हिप्पोक्रेट और कदीम रोमन मालिश केरन ने अपने तरीकों में हजामा का वसीब मन पर इस्तेमाल किया। इब्न सीना ने अपनी मशहूर किताब अल कानून फिल तिब में हजामा अमल पर तफसीलन बहस की है। ये अमल जो पहले शीशे के कप से किया जाता था, डिस्पोजेबल कप के साथ सरंजाम दिया जाता है। अच्छा, तो ये अमल कैसे सरंजाम पाता है? एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एरसोई ने इसकी तफसील कुछ यूं बयान की है। हम जिल्द को वैक्यूम करते हैं, इससे जिल्द पर गुंबद नुमा ढांचा बन जाता है। अगर हम इस महल पर रुक जाते हैं तो हम इसे ड्राई कपिंग कहते हैं। अगर वहाँ पर थोड़ा सा ची लगाते हैं, यानी अगर हम एक स्केपल को हल्का सा कट लगाकर वहाँ से खून निकालते हैं, तो फिर इसी जगह को दोबारा वैक्यूम करते हैं। इसे गीला कप या फिर आवाम में हजामा कहकर पुकारा जाता है। अब ये एक बहुत अहम नुक्ते की तरफ चलते हैं, यानी मुस्तंद पेशेवर अफराद की तरफ से की जाने वाली कपिंग थेरेपी। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एरसोई का इंतबाह इंतहाई वाज है। तुर्की में महज तिब्बी स्कूल से फारग तहसील डॉक्टर रवायती तकमीली तरीकाकार सर अंजाम दे सकते हैं। मजीद ये कि इसके लिए महज मालिश होना काफ़ी नहीं, वजारत सेहत के एक्रेडिटेड सेंटर से मुतलका रवायती और तकमीली तरबियत हासिल करना लाजमी है। ऐसे मराकज से ग्रेज करना बिल्कुल जरूरी है जिन्हें अंडर द स्टेयर्स यानी गैर मयारी मराकज कहा जाता है। एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर एरसोई जोर देते हुए कहते हैं, ये एक चराही अमल है, जाने सेहत बहुत अहम है, ये इंतहाई जरूरी है कि इसे हुनरमंद लोग ही सर अंजाम दे। मरीजों को कतई तौर पर ऐसे मराकज में जाना चाहिए जहाँ ये तरीकाकार वजारत सेहत से मंजूर शुदा और तस्दीक शुदा मालिश के जरिए अंजाम दिया जाता है। कपिंग थेरेपी सेहत के कौन से मसाइल में मुअसर है? डॉक्टर एरसोई के मुताबिक इसका सबसे नुमाया असर दर्दों की शिकायत में आया होता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि

ये दायमी सर दर्द और दर्द शकीका में दायम मौसर है। मौजूदा मेडिसिन की इलाज मुआलजे मरीज में बाज औकात मतलूबा नतज हासिल करने से कासिर रहते हैं। हम मरीजों को 3 सेशनों में बाज औकात 8-10 सेशनों के साथ तवील अरसे तक दर्द और तकलीफ से दूर मयार जिंदगी बेहतर से होने से इम्कना कर पाते हैं। गर्दन कंधे और कमर के दर्द के खिलाफ भी कपिंग थेरापी मुअसर है, लेकिन कपिंग थेरापी महज दर्दों तक महदूद नहीं, कुछ दायमी बीमारियों के खिलाफ भी मुआवनत कर सकती है। डॉक्टर एरसोन ने इस वाले से दर्ज ज़ैल मालूमात का इश्तराक किया है। हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड लिपिड लेवल पर लिटरेचर में तहकीकात का वजूद मिलता है। मजीद बरहां ये देखा गया है कि डायबिटीज के मरीजों में मौजूद अद्वियात के अलावा जब हजामा किया जाता है तो ये खून में शुगर को कंट्रोल करने में मुस्बत किरदार अदा करता है। नतीजतन 4000 साल कदीम इस अमल को जब सही तरीके से बरकरार लाया जाए तो जदीद अद्वियात के साथ साथ कवी किरदार अदा कर सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर याद रखें, लाजमी है कि पहले माहिर डॉक्टर से मशवरा किया जाए, फिर तस्दीक शुदा मरकज का इंतखाब किया जाए। अल्लाह आपको अच्छी सेहत अता फरमाए।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: सामिन, रूस यूक्रेन जंग में मैदान जंग और मुज़ाकरात की मेज दोनों जगहों पर तनाव मुसलसल बढ़ रहा है। रूसी सदर व्लादिमिर पुतिन भारी फौजी नुकसान और इकतसादी दबाव के बावजूद यूक्रेन में फौजी कार्रवाई से पीछे हटने का कोई इशारा नहीं दे रहे हैं। पुतिन ने कहा है कि वह फौजी फतह हासिल करने के अपने यकीन पर कायम हैं। सर्दियों की आमद के साथ ही रूसी मीडिया यह पेशगोई कर रहा है कि यूक्रेन के पास फिजाई दिफाई मिजाइलों की कमी का फायदा उठाते हुए हमलों की शिद्दत में इजाफा किया जाएगा। दूसरी तरफ माहिरीन का कहना है कि मास्को का बुनियादी हदफ यूक्रेन को एक काबिल अमल रियासत के तौर पर बरकरार न रहने देना है और इन हालात में अमन बहुत दूर दिखाई देता है। दूसरी जानब यूरोप और रूस के दरमियान मखलूत जंग के इल्जाम भी संगीन होते जा रहे हैं। मगरबी हुकाम मास्को पर साइबर हमलों और फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जबकि रूसी वजीर खारजा सर्गी लावरोफ ने बरतानिया और यूरोप की तरफ से यूक्रेन को मिजाइलों की फराहमी पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। क्रेमलिन का मुतालबा है कि मगरब की जानब से कीव को दी जाने वाली माली और फौजी इमदाद फौरी तौर पर बंद कर दी जाए। दुबई से तेल अवीव जाने वाली दुबई की एक परवाज को उस वक्त सऊदी अरब में हंगामी लैंडिंग करनी पड़ी जब उसके पायलटों के दरमियान पुरतशद्दुद वाक़े के बाद तैयारे के अगवा के मुमकिन ख़तरे का अलर्ट जारी हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्लाई दुबई की परवाज में सवार मुसाफिर और अमले ने इस जद्दोजहद के बाद तैयारे को तबूक हवाई अड्डे पर बाहिफाजत उतारने में मदद की, जिसका आगाज उस वक्त हुआ था जब को पायलट ने पायलट को चाकू मारा था। इस वाक़े का मकसद अभी तक तस्दीक शुदा नहीं है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और अमरीकी सदर ट्रंप ने खदशा जाहिर किया है कि यह वाक़ा एक मुमकिन दहशतगर्दाना हमला हो सकता था, जबकि फ्लाई दुबई ने कबल अज़ वक्त कयास आरइयों के खिलाफ खबरदार किया है और कहा है कि हालात की तहकीकात की जा रही हैं। फ्रांस में तलबा की जानब से तालीमी हालात के खिलाफ एहतजाज के लिए शुरू किए गए मुजाहरों में

सामिन, चिपकने वाली चीज़ें जो एक अहम ज़िंदगी बचाने वाले हैं जब हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है, इनकी एक तवील तारीख है। साइंसी तहकीक से ये बात सामने आई है कि बहुत से मुख्तलिफ कुदरती मवाद से तैयार करदा चिपकने वाली चीज़ें इंसानी तहजीब में तकरीबन 6,000 साल से मौजूद हैं। चिपकने वाली चीज़ें जो टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ रोज़ बरोज़ तैयार हो रही हैं, अब मस्नूई मवाद से तैयार की जाती हैं। आज इस्तेमाल होने वाले सुपर ग्लू की तारीख सिर्फ 80 साल पुरानी है।